0: Ei, kun näin kävi tuokki, ei diussa käännä, kun mä tiitän noita. Ei, kun sakka, että pääsi muuna, kun pitää kun tansaa, mä tiiä, kun mä pätistä vegin tiikutta.
1: Le 6 octobre 2026, un mardi, c'est le bas mouillac, ou habitagan.
2: Oui, c'est moi qui ai une moyenne, je suis mardi, il y a dans ma ligne, Julie Morlin, Stock Show. N'était pas de La canaga tasa,
3: A partir de votar, ¿no? Ya, ne, ne, ne.
2: George Morgo to Razi to be in a more. Our man, our name is Bapatana, you know, but then, Modes as I'm Quentino, Ginano, Gigi, Tansba, Modena, Ginano, they go, Gigi, I am Yah. They win, put the Pantani, they them straight mag, and they had to put that a GP sending in the Gin Tawi Madman. Kita we matiu nya ke stade mga puha ini min kota manengan da komision waya ne sure paputa kan we sira mga ne je jene hosta tu nu ta wa ite ona mo china nu ate ino di no ja pase mi ma pase jena ni sina be ga no de ba ta we matiu pe payu ba ti manen man ni ke man ne sma sen ma de pano awa jene ja mo sta de mo nu je I was like, I was like,
3: I mean, we have a point, you know, Jenten, who Jenten, look to be Jibana, or Mutin, Jibana, Pohamuja, who are with my, or with my, Javi, with the Pantana, Javi, Tutena, Spanna, Spanna, Poistra, Mistami, Hutna, Jiva, Mukhi, Hutman, Yoka, Tawi, Jan, Jam, Stagada, Jay, Tutena, when I was seeing him.
1: Au pestoyer aussi, ne vous assurez là.
2: Ah ouais, pas un tel dinanumta, mais quand tu vois les mondes, tu es inoté, tu n'as pas de janaja au studio. Manette, Madame Christine Fréchet. نين واتنين فوقت نين واتنين نين مش بس كوانا كون انتين كمان يعني نكون وانونو انا ماني بندي هي مي مي كنت نحن نو بي بي بي كا كوهي نحن وانا انا لو بوجا هو ني بانا نو كا كو اي تدو ني بيسن اولا او بيغا بن بندا بن بن
1: اه ولي اجيش بني بل يقوش مهتا قويا
2: ما بين نو نو نو بي ونيا جا دو توني بان
1: اوكي ونيا
2: تا اه اه اه منو يتماني بان كاجي تاس مي جي توان دي بي تي تاوان كاجي تاس اه
1: اه Ok, vous avez dit un anouet du Plessis, une histoire monnaie, c'est une Maggie Richard.
2: Une histoire monnaie, une histoire monnaie, une histoire monnaie, merci, préfète, la merci. Une histoire monnaie, une histoire monnaie, une histoire monnaie, une histoire monnaie, une histoire monnaie, une histoire monnaie, monnaie, Macpai mutta he voi hipu tätän de mamuk anta mamuk viitä semtu tänne siisi pyytämä tässä man voi aiko jopen tätän siisi jat nun stua metiä sa pu puetan se ja puetan se viin kuten anneman pu tätän viin stuu siisi pu stua meti muja ehkune anne hiuna huja jatta meti no ehkua ehkan tämte vi कुछ पंताना ने आई हुई तत्समक ने मेगी मैन मैन मीन्स ने कुछ पंताना ने जी जी आहत में ते तो वह ने आने में होंगे न वनों ने सब पंडित जाने कागो ने मोना वजह ने न हट हम ना वो जी जी में पंताना जी वजह के मिजेत ना ना कोज मिजेत ना जा हम ने तम इन तो वास्ती मगना ने इनोशिया तम मिजेत वास्ती ने अपने जिन्हानों ने होच्यों ने जो इसे ना जब इनो ने आज एम निहोत आत्म ताहा तो वहीं उसे मुझे देंगे निहोत आत्म ताहा में चुनो वास्ते चाहिए बंदे नेम्स का हम पॉइंट और नो जी मुझे आने से मुताहा में चुने हट और ते निहानों जगा नो जी पेरो चेंज ताहा में चुनो नो डिज़ाइना ने ने जो आज ने पे कॉफी में ना जा वहाँ में दिखाते हैं ने वाटे नो इन्होंनो मंत्र जो ते निना ने वे मिस्कास ने मिस्कास नाम में निना नहीं तो चोगा ना इन्होंनो मंत्र मिस्को बहुत वाट में ते जिसी तैयार ताए जा ने जो गेमा जिसी मिस्टा मांचे गेमा जी तो ता है मैं हाथी ने विचार जा अब ने रावना वाटे वहाँ निना कु ya está ya no de que no pues si bueno y podemos tino te voy a tomar no bueno bueno pero la vez ni cuánto chupete nada chito con uno no llega te va si bueno no sé si además si yo me lo viste sé esto con uno ya ya nada no mi hijo por dos minutos si si si no me voy ya mi todo te vi todo cuando y nada te voy a todo ni ah corte mi todo ni nada y si bueno más मुक्विने इशुरा तोते दैवन या काटा बुतने ओने ओने मिनो विने ये मोंचा पेन अबन माने जे जे वक्वी मगन जे मशे जे कोक्वी मिनन जे जे वक्वी मगन जे इमे चे मिगे मामुगा तिनो तें जे ने जे मामु ता तिनो त यागा मा मे हाजे विचन
1: आ के ने मे जते निसे ना दिनु मे जते एहन स्टा माने मे जते उदा मन स्टा मा गा गा गोई ने इशकुदा एवी ना ने उदा गा जी होता है ना के पिचा मे गिरिशा दे जी प्रेसी
2: Antes de cascana chihuesa, ahí ni te llevan cascana chihuesa, mané, te ahí ni te agüe, llevan de cascana, entonces ya ni muni, y te llevan de ni nada, ni nada, te agüe, y te no, guate, no, sana, no, te agüe, me atumó, bueno, no, más, tengo, te tocan ya, nene, que ni te entajo, me no entajo ya, nene, ya, estuvo, nene, escane, cuchipanto, Si non stop mais ça est-ce que hoja atma web mais ça ta web pour gata ou ya non stop mais ça put senna ne veut ni que je no et wa et ten ne ya din na ska to ta de to ni ben ye ta wa ne ten de me me ni na to na ten de ko ye mi tu as que ha mati no mi no no ten ne